0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

और रेडियो एसबीएस की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो एसबीएस की जरिए। एक बार फिर से भजन यात्रा प्रोग्राम में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विपिन सचदेवा किया।

भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। अनूप जलोटा जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

में ये सुंदर औरत ही सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार बाबला जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन भोजपुर काम में पेश की गए बाबला जी की आवाज में अभी आपने सुना। सुन वालो चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुनवलो चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनवालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में

सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुन वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण हम आपको ले चल

किया आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना।

बस और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चले हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

बजकर प्रोग्राम में चार मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, 30 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जून महीना का आखिरी दिन, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तकरीबन 11 बजे तक पुरानी नगमे रोजाना आपके लिए बस पेश किया जा रहा है, 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। और आप सभी सुनने वालों के लिए भी गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। और यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो चले आप सभी सुनने वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय पेश किया जा रहा है। आपको ले चलते हैं द माइटी मुकेश की ओर। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

एक काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560 और ये तार की नंबर जो है टेलीफोन नंबर कंतूर का दफ्तर का जो है 24 पर दख बराबर होता है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए। अब वैसे हमेशा भी आप ईमेल कर सकते हैं रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए और इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मुकेश एन लता हम आपको ले चलते हैं फिल्म खराम परस मनी।

मुकीस और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना मेरे गाड़ी उड़न घटोला। गाना का बोल है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

उरन खटोला मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। किशोर एनाशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। आशा भोसले एन किशोर कुमार।

गाना जो प्रोग्राम में पेश किया गया किशोर और आशा जी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया गया सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपकी बार लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्म दुलारी से पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और साथियों के आवास में ये गाना पेश की गई पुरानी फिल्म दुलारी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की इस पुरानी नगमे की खास प्रोग्राम में। किशोर ए नशा, हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम दुलारी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई काफी प्यार भरी गाना अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई है द माइटी मुकेश की आवाज में आज की प्रोग्राम में

दमाई टिमुकी इसकी आवाज में ये गाना पेश की गए रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना धीरे धीरे बोल

दिलीप कुमार और खासतौर पर विजयंती बाला का खास फिल्म फिल्म राम और श्याम, उसी फिल्म का गीत पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। ये खास गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए है। मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में अबकी बार होगा और आपको हम ले चलते हैं ये गाना की ओर।

0: में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: साथिया

ये खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है सी रामचंद्र का संगीत पर। गाना को आप सुनते ही रहना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है लता।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं। दवाई

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस भूपिंदर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सर ये। चलिए प्रोग्राम में अगली बार मोहम्मद रफी एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कालका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवल के आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया गया आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है, फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

गाना बस पीस की गए। फिल्म का नाम कर्स, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्स का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS की श्री सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

मौर्य कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। चले शान और महालक्ष्मी आयर की ओर।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

0: रेडियो एसपी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी ये फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का

एस के जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हबरास उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो एस बी एस के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

है तो फिल्म क्या कहना, अलका याग्निक एंड सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए तो फिल्म क्यों हो गया ना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गए सालीमार फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में रेडियो SBS का आज की खास प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में अगली बार ये गाना बस सुनते ही रहना।

मंगेशकर की आवाज में एक फिल्म शर्मिली, फिल्म का नाम शर्मिली, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश

कैनबस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से मोहम्मद रफी और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार शोला और शबनम फिल्म का नाम होगा।

द फिल्म शोला और शबनम मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार आपको हम ले चलते हैं एक और काफी पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, लेकिन अब की बार सुभाष भाटिया की आवाज में पेश किया जा रहा है जो तलत जी का गाने बड़ी ही खूब गाए हैं। आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0362656560। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं।

सुभाष भटिया की आवाज में दलित जी का एक खास गाया हुआ गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर हेमंत कुमार की आवाज में एक गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म नागिन का गीत आप सुनते ही रहना।

हेमन कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये खास पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

हंसगाना पेश की गई मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। और चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर मीना कपूर की आवाज में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है आंखें।

0: या डो बैठे यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज
1: रेडियो वेस में इसकी सुनिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है औलाद।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि करमलाल, दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radio.sbs.nl।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा गजोंग दूर आशा भोसले एंड सुरेश वाटकर गजोंग दूर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, kwam uit de prachtige film Dharkan van Akshay Kumar, Shilpa Shetty en Sunil Shetty. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस गजोंग दूर सोनू निगम एनएल के याचने के कौमत आयो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। आयो द फिल्म बजरंगी भाईजान इस इत फोहत लीचे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर होर तुदन ए ले ले ए ले ले ले ए ले ले ए ले ले चल बेटा सेल्फी ले ले रे।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gita Onkelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakaro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

वह मधुर फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Durwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

0: दुपट्टा मेरा वस अ द फिल्म मुझे कुछ कहना है एंड इसका सॉन्ग अनुराधा श्रीराम अ द फिल्म अजनबी कॉम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या
1: अय्या।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खुशाद और कुमार सानू एंड अलका याचने के कवाम आए द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म अनारी से, दिल की नज़र से। और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज़ में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्यूंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर। पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।